0: ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਸਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੀਆਂ ਹਾਂ।
1: ਖਾਣ ਪਾਣ ਪਹਿਰਨ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਬਸਤਰ ਬੇਭੂਖਣ ਦੇ ਵਿਖਿਆਤਾ।
0: ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਨ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਬਸਤਰ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
1: ਸਭ ਤੇ ਸੁਣ ਤਿਸ ਕੰਨਿਆ ਕਹਿਓ, ਪਾਲਤ ਪ੍ਰਭੂ ਸਵਨ ਕੋ ਲਹਿਓ।
0: ਚਾਰ ਜਣੀਆਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੀ ਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਏ। ਜੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨੀ ਬੋਲਦੀ ਪਈ, ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨੀ ਮਿਲਾਉਂਦੀ, ਅੱਗੋ ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਭੈਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੀ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ।
1: ਦਾਤਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਰਾਮ, ਕਰੇ ਜਗਤ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਾਮ।
0: ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਭੈਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਗਤੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
1: ਸਭ ਦਿਨ ਸਭ ਕੋ ਭੋਗ ਭੁਗਾਵੇ, ਕਰ ਹਾਰ ਕੋ ਜੀਵਤ ਪਾਵੇ।
0: ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਗੀ ਹੋਈ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਤ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ।
1: ਸੋਨਾ ਦੇ ਸਭ ਲਹੇ ਮਿਨਾਸ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਕਹਾਂ ਜੇਨ ਕੀ ਆਸ।
0: ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਿਜ਼ਕ ਨਾ ਦੇ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਭੈਣੋ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਇਹੀ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਏ। ਵੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਏ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵੈ ਉਦਮ, ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀ ਉਪਰਿਆ, ਸਹਿਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗਾ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਤ ਹਰਿਆ, ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁੱਤ ਬੰਤਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸਕੀ ਧਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜਨਨ, ਪਿਤਾ ਭਾਵੇਂ ਬਾਪੂ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁੱਤ ਬੰਤਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸਕੀ ਧਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉੜੈ ਊੜ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾਂ, ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਰੇ ਸਰਿਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੂੰਜ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਉੜੈ ਊੜ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾਂ, ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਉੜੈ ਊੜ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾਂ, ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਰੇ ਸਰਿਆ, ਤਿੰਨ ਕਵਣ ਖਿਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਤਾ ਰਿਜ਼ਕ ਸਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਤਾ ਰਿਜ਼ਕ ਸਮਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਤਾ ਜੰਤ ਉਪਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਨਨੀ ਕੇਰੇ ਉਧਰ ਉਦਕ ਮੈਂ, ਪਿੰਡ ਕੀ ਆ ਦਸ ਦੁਆਰਾ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਧਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸੇ ਦਿਸ ਦੇ ਦਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ, जननी केरे उधर उदक में पिंड किया दस द्वारा, दे आहार अग्न में रख है ऐसा खत्म हमारा। कह लगे जेड़ा अग विच रोटी देंदा है एवे तू कहना फलाना बंदा देंदा है, अग विच जेड़ा रिजक देंदा सी ओही तेनू इत्थे रोजी पिया देंदा है। कह लगे कुम्मी जल में तन तिस बाहर, कछु कुम्मी पानी विच आंडे ओदे रेते ते पए ने, पंख खीर तिन नाही ना आंडिया नू खंभ ना ओना दे दुध दा प्रबंध, पूर्ण परमानंद मनोहर समझ देख मन माही, पा खान कीट गुप्त होए रहता ताचो मार्ग नाही। कहिंदे ने पत्थर दा कीड़ा पत्थर दे वेचे, कोई रस्ता नहीं जिस रस्ते आपां रिज़क पहुंचा सकीए, देख तनिया जे पत्थर विच पैदा कीते कीड़े नू रिज़क देंदा है तू बंदे दी आस ना करी, देण वाला केवल एक ओही आ। साहब कहिंदे ने बाणी अंदर पाखन कीट गुप्त होए रहता ताचो मार्ग नाही, कह तन्ना पूर्ण ताहू को मत रे जीड नाही, एवें जी मेरे मना तू डरदा ना रही। ए बच्ची कहिंदी नै भैणो तुसी भुलेखे विचो, ए सारी सृष्टि दी पालना कोई होर पिया करदा है, मैं ता गुरमुखां तो बचन सुन के आई हां। ओ ता कहिंदे ने आसन लोए लोए भंडार, ओदा टिकाणा हर इक लोक दे विच जो किछ पाया सो इक आवार। कहन लगी मैं ता बचन सुने ने महापुरुषां तो के रिजक देण वाला कोई मां बाप नहीं, केवल एक वाहेगुरु है।
1: राव रंक गज चीटी जोई सबको दाता त्राता सोई।
0: कहन लगी देखो भेनो आ तुसी गरीब वल तको, भावे मजदूरी करदा है आखर ओ कखां दी कुली विच रोटी पका के खांदा, साडा बापू ते नहीं देंदा। जे कोई तनाड़ राजा रोटी खांदा है ओनू ही मालक देंदा है। कहिंदी मुकदी गल की मेरे गुरु की बाणी कहिंदी है, कीड़ी तो लै के हाथी तक सब दी संभाल मेरा निरंकार करदा है।
1: अपर दिखे समरथ है कहां जीवन जो पाले जै कहां।
0: कह लगी किदे अंदर समरथ है ओ मेरे वाहेगुरु जी दा मुकाबला कर सके, इन्हें जीवां नू कोई पाल सकदा है, किसे अंदर ताकत नहीं। शायद ए ही कारण मेरे गुरु नानक साहब जदों विस्माद भी जांदे ने ना ते एक गल कहिंदे ने दातिया मैं इस गलो हैरान हाँ, ओ तेरा घर की हो जाए जिस घर विच तू बैठा, उस घर दे दरवाजे की हो जाने जिस दरवाजे विचों तू लंघने। ते पुछया महाराज हैरानी क्यों, कहिंदे ने हैरान की तां इन्ने जीव पैदा करके सब दी संभाल करने, मैनू दस तां सही तेरा घर की हो जाए जिथे एक थां ते बह के सब नू रिजक देने। असी पढ़ने सो दर तेरा कहा की हो जाए तेरा दरवाजा, सो घर कहा की हो जाए तेरा घर, जित बह सब संभाले जिथे बह के तू सारिया की संभाल करने। साहब जी दे ए प्यारी बच्ची कह रही है गुरु नानक दी बाणी दी कृपा नाल के सब नू रिजक मेरा दातार देंदा है, कौन है जेड़ा ओदे तो बिना किसे नू रिजक दे सके।
1: एम सुन कन्या सब ही कहें हमको पित प्रित पालत रहे।
0: कहने एनी गल सुन के दूसरियां जेड़ियां भैणा ने ओ गुस्से विच आ गईयां, कहन लगियां चुप कर जा तैनू समझ ही कोई नहीं, असी नहीं जानदियां कौन है रब देण वाला, सानू तां साडा बापू ही कपड़े देंदा है, सानू तां साडा बाप ही खान नू देंदा है, सानू तां साडा पिता ही हर प्रकार नाल संभालदा है।
1: नहीं देखियो दे तो कित राम देओ जाए किसके कब धाम।
0: अब कहन लगियां असी नहीं देखिया कि वाहगुरु कोई है किसे दे घर भी जाके रोजी देंदा होवे, कदी तके साडे घर अंदर रब आया होवे ते सानू आ के रोटी दे के जावे।
1: अनबस्तर सब करके त्यार किसको कौन देत किस बार।
0: लगी देख साडा बापू ता सानू कपड़े देंदा है, रब ने कदी कपड़े खुआ के दिते ने, साडा बापू ता अनाज लिआउंदा है कई तरह दे फल लिआउंदा है, तू कहनी राम देण वाला है रब देण वाला है खुदा देण वाला है, असी नहीं देखिया किसे दे घर अंदर खुदा ए वस्तुआं लेके आवे।
1: एम सुन के कन्या लर परी जाए पिता के टेक सुध करी।
0: कहिंदे आपस विच गल करदियां करदियां ओ इन्नी कु दृढ़ अरादे वाली है, कहन लगी तर्क ना करो विश्वास करो के रिजक देण वाला वाहेगुरु है, जिन्हें शरीर दिता है ओदे बचना ते भरोसा कर लवो। शायद यही कारण कई वरी मनुख उस रब दी दित्ती हुई दात नू लेके असल विच मैं मेरा ढंग अपने इतिहास की विचार करन दा, जदो इतिहास की पंक्ति उत्ते गुरु की बाणी की मोर लग जाए ना ते गल पक्की हो जाती। साहब ने बाणी विच असल विच बच्चियां दे ख्याल नहीं, हर एक नास्तक मनुख की बिरती है कि रब वस्त्र देंदा है, रब सानू रिजक देंदा है, रब की साडा करन वाला है। ते मेरे साहब ने बाणी विच क्या कहन लगे, नहीं होए जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेवा दिती बोले तात, जिन मन राख्या अग्नि पाए, वाजै पवन आख है सब जाए। मेरा गुरु ग्रंथ साहब कहिंदा रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सवार सिंगारिया, गर्भ अग्न में जिन्हें उभारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, पर जोबन भोजन सुख सूद, बिरत भया ऊपर सात फैन, मुख अप्याओ बैत को देन, इन्ना कुछ लैके भी कहना कौन देन वाला है। ते मेरा गुरु अर्जन देव कहिंदा दात्या ए निर्गुण ए तेरे गुणा नू नहीं समझदा, ए निर्गुण गुण कशु ना बूझे, बख्श ले हो तो नानक सीजे। देन वाला ओ रिजक वैगुरु वे, साहब ने बाणी विच इशारे कीते, इस पानी ते जिन तू करिया, माटी काले देवरा करिया, उकत सुरत लै जोत परीख्या, मात गर्भ में जिन तू राख्या। साहब ने बाणी विच कहा मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तै तुम राखण हारे, पावक सागर अथात लहर में तारो तारन हारे। साहब ने बाणी विच कहा माता के उदर में प्रतपाल करे, सो क्यों मनो विसारी है, मनो क्यों विसारी है एवड दाता, जे अग्न में आहार पहुंचावे। साहब ने बाणी विच कहा और की बात कहां कह तो सो, पेट ही के पात बीच बचावे। और रिजक देन वाला एक ही लड़ पईआं ते अगो कहिंदी देखो जिन्निया मर्जी दलीला दे लो, पर मेरे ते असर नहीं, मैं गुरमुखा तो एक बचन सुनिया के देन वाला वाहगुरु है, कोई किसे नु रिजक नहीं देंदा।
1: हम सब कहें पिता ते खावत, एक इस बात अपर बिदतावत।
0: इन्हें लड़दियां लड़दियां ए आणियां उठ पईआं ते बापू दे कोल घर गईआं, ते पिता बैठा सी अपने मंजे ते, ए विचारी भी पिछे पिछे तुर पई। चारा जनिया ने जाके पिता नु घेर लिया ते कहन लगियां पिता जी देखो आ किहो जिया गल्लां करदी पई है, असी बैठियां सा अज इकठियां ते गल चल पई के साडा बापू सानू रिजक देंदा है, साडा पिता सानू बस्तर देंदा है, ते ए अगो होर तर्क करदी है।
1: जो प्रत पारे देत हमेश, लगतं ते जिन कीन विशेष।
0: कहन लगे ए तां गल्लां होर करदी है, आखदी है रिजक देन वाला कोई होर है, जिहड़े साडे छोटे जे तन नू संभाल के रखे है, ते जिहदी कृपा नाल तन वड्डा हो रहा है। सुख सौ

भवते परम सम्मान योग शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सोभाई मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों आप जी ने इस संध्या वेले दे दीवान अंदर हजूर दे पावन पवित्र इलाही बचना दा रस पिना कीर्तन सरवण कीता है। आप जी बड़े प्यार दे नाल सतगुरु गुरु रामदास महाराज उन्हां दी उस्तत अंदर उचारण कीते हुए सवैया विचों पट्टां दे बचन आपने गुरबाणी कीर्तन विच सरवण कीते ने, जिथे आपां रोजाना सतगुरां दे पावन पवित्र इलाही बचना दी विचार गुरु की बाणी दी विचार करने हैं। उथे हर बुधवार गुरुदेव जी दे पवित्र इतिहास नूं भी आपां वाच रहे हां। जिवें पिछले बुधवार आपां ने विचार कीती सी कि पट्टी दे इलाके दा चौधरी जिस दे घर अंदर पंज धियां ने, उन्हां विचों एक दा किरदार एक दी भावना नूं परमेश्वर ने इहो जिहा भाग लाया कि जिथे भी कोई महापुरश कोई गुरमुख जन बैठदे ने, ए बच्ची उन्हां दे कोल बैठ के उन्हां दे बचन श्रवण करदी। ते एक दिन धन गुरु नानक साहब जी दे दर तों बख्शे हुए कुछ गुरसिख जड़े एकांत विच बैठ के गुरबाणी दी विचार कर रहे सन कि हर एक नूं रिजक देण वाला केवल एक परमेश्वर है, हर एक दे भागां विच जो मालक ने लिख दिता है ओ कुछ उस नूं नसीब हो जांदा है। ते इस बच्ची ने गुरदेव दे उस शलोक नूं अपने खिरदे विच दृढ़ कर लिया ते जबान तो कंठ कर लिया कि पुरखां बिरखां तीरथां तटां मेघां खेतां के हर एक नूं रिजक देण वाला परमेश्वर। जदों बच्ची घर आई है ते एक दिन आपस विच पंजे भैणां बैठियां ने ते चार विचार करदियां ने चार जनियां कि साडा बाप साडा बापू पिता कितना चंगा है, जिहड़ा पहरन नूं वस्त्र दिंदा है, खान नूं भोजन दिंदा है, तन ते पाण वास्ते सुंदर गहने लै के दिंदा है, ते इह खामोश हो के सब कुछ सुनी जा रही है। पर जदों इहनूं पुछया गया तूं क्यों नहीं बोलदी, ते इस बच्ची ने इक्को उत्तर दिता सी, नहीं भैणों ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਵੇ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਸਤਰ ਪਾਨੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤਨ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜ ਝਗੜ ਕੇ ਉੱਠ ਗਈਆਂ ते चारा ने जा के दुनी चंद नूं कहा सी कि देख असी तां कह रही बापू तेरा दिता खानिया वा, पर ओ कह रही है देण वाला कोई होर है। जदों बुलाया गया ते इस बच्ची ने बेबाक होके कह दिता कि देण वाला बापू केवल एक परमेश्वरी जड़ा पत्थर दे कीड़िया नूं रिजक देंदा है, जड़ा पानी विच पैदा होए जीवां नूं रिजक देंदा है, जड़ा धरती ते पैदा कोई बनास्पति नूं रिजक देंदा है,
असलियत पुछें ते जो कुछ तू राज भाग मानना पे ए भी उस करतार दी दित्ती दाते एवें भुलेखे विच पै के तू कह रहा मैं देण वाला कोई किसे नू देण वाला नहीं अपने भाग खांदे ने उस दे मन नू इन्नी हंकार नू चोट वजी कह लगा जे तू रब दा दिता खानी है जे तू करतार निरंकार दा दिता खानी है ते साड़ी बरादरी विच एक कोड़ी है मैं तेनू ओदे लड़ ला देंगा फिर देखांगा कि वह करतार वो निरंकार तेरे भागां विच जे ओवे तू अपने भागां विच इत्थे नरक भोगेंगे। उस बच्ची ने सत बचन करके प्रवान कर ले इथों तक आपां ने विचार कीती सी। आओ इस तो अगे इस पवित्र प्रसंग नू आपां वचने ते सतगुरु गुरु रामदास दे दर दी लईए टेक। कवि संतोख सिंह ने इस प्रसंग नू गुरु अर्जन देव जी दे वेले नाल संबंधित कीता पर जदों इतिहास नू पड़चोलने आ ते असलीयत ते ए प्रसंग गुरु रामदास जी दे वेले वापरे। गुरु रामदास सरोवर करीब करीब तैयार करा चुके सन पूर्ण ताल खटाया भाई गुरदास होरां ने जिक्र कीता पर खैर जिमें कवि संतोख सिंह ने इस नू बयान कीता अज इस दीवान दे अंदर संत बाबा लाभ सिंह जी कार सेवा वाले उन्हां दी सुपत्नी बीबी हरभजन कौर जिन्हां दी सतवीं बरसी उन्हां दे सपुत्र वल्लों भी इह समागम मनाए जा रहे हैं। सतगुरु कृपा करे इस परिवार नूं अपने दर नाल जोड़ी रखे। आओ प्यारिओ इस इतिहासक प्रसंग दी विचार करन तों पहलां मनोबिरतियां एकागर करो सुरत गुरदेव दे चरणा अंदर जोड़ो ते बख्शो आशीष बड़े प्यार अदब दे नाल उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी करो बख्शिश गुरमुखो फिर उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी।

इस अहंकारी बाप ने यह कह दिता कि मैं तेनू एक कोड़ी दे लड़ लावांगा जिस दे हाथ पैर उंगलियां भी झड़दियां पईआं ने, तू ऐसे जींदे जी नरक भोगेंगी क्योंकि मेरे हाथ विच बहुत कुछ है। ते उस बच्ची ने अपने पिता की आग्ञा नूं सत करके अपने सिर

नानक होशी की सच तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुर बोले तब विषम हुए जाए।

नानक होशी थी सच तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुर बोले तब विषम हुए जाए।

जो हमारी बेद होती मेरे सतगुरा साबित तुम्हार जान हो आपे खम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता।

खान को संगो जुजे जुझार बचित्र नाटक, मारने जाबत खान को संगो जुजे जुझार, हा हा ए लोका भयो सुर्ग लोक जयकार, किन्ने मेरी पुवादा पुत्र जदो दुनिया तो गया ते रब दे घर विचो दी करनी नू देख के जय जयकार की गई। पहला संगो शाह शहीद होया, परत के दूजा इन्हां दी पुवादा पुत्र जीत मल उन्हें इजाजत मंगी, ओदे मुकाबले ते हरी चंद आया। ए बड़ा तकड़ा तीर अंदाज सी, एदा तीर कदी खाली जांदे ही नहीं सी। उधर जीत मल इधर हरी चंद दोनों का जग अत का ए लड़े ने, इधर जग हुंदा है ते किसे दे खबर जा संडोरे दिती, नेड़े पैंदा सी पीर तेरे भेजे हुए पठान दगा दे के चले गए। पीर ने पल्लू फेर दिता संडोरे दे चार चबेरे, कहिंदा जेड़ा मेनू प्यार करदा है ओ अपने घरों सिर ते मौत दा खफड़ बन के तुरयो, की होया जे पठान धोखा दे गए। चार जवान पुत्र अपने दो सके भरा प्रिंसीपल सतबीर सिंह लेंदे ने अपने बापू नूं भी नाल लै लिया, अपना बाप दो भरा चार पुत्र ते 700 मरीद लै के ओ पंज वक्त दा नमाजी पीर बुद्धू शाह गुरु गोबिंद सिंह दे चरणा तो फिदा होने वास्ते जांदा पे। उधर जग पूरे जोबन ते वे ते पीर बुद्धू शाह ने एक पासों आके हल्ला कीता ते साहब ने पूछा ए करलाट क्यों, किसे ने कहा पीर बदरुद्दीन आ गए ने। साहब हस के कहन लगे मैनू आस सी कि सिदक वाला ए मुड़ के जरूर आवेगा। उधर वह जूझते रहे, उसे फिर साहब कहते हरी चंद ते जीत मल दे जंग विच जीत मल नू सीने विच तीर वजा ओ शहीद हो गया, हरी चंद नू वजा ओ बेहोश होके जमीन ते डिग पिया। जदों जमीन ते डिगा पहाड़िए नू चौके लै गए। इसू बाद भीखन खां आया, फिर गुरु गोबिंद सिंह आप टिब्बी तो थले उतरे। दो भरा शहीद हो चुके ने, कई सिख शहीद हो गए। पहला तीर पत्थे विचों गुरु गोबिंद सिंह ने कढ़िया ते जेड़ा भीखन खां पठान दगा दे के गया सी पूरे जोर नाल उहदे वल तक के निशाना मारिया, ते गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे ने इक्को मेरा तीर जेड़ा है उहने या अली कहा, मूंह खुलन की देर सी तीर उहदे मूंह विचों आर पार हो गया, जमीन ते डिगा उहदी मौत होई। इधर हरी चंद नूं आ गई होश, इहने पुछिया पहाड़ियां नूं की बनिया, कह लगे तेरे तो बिना बाजी हार चले हां। परत के पत्थे विच तीर पाए ते आ गया गुरु गोबिंद सिंह दे मुकाबले, इत्थे असली जंग बनदा है। सह फिर बचित्र नाटक विच लिखदे ने उधरों घोड़े ते असवार हो के मैं तुरिया ते उधरों हरी चंद तुरिया, कहिंदे ने इहने अपनी कमान दे विचों तीर कढे ते ललकार के कहिंदा गुरु गोबिंद राय कर वार, मैं अज तेरी अलख मुका के जानी है ते मेरे साहब दे मथे ते कोई वट नहीं। हस के कह लगे हरी चंद एवें मान नहीं करीदा, एक नहीं मैं तेनूं तीन मौके देना वा, तू तीन तीरां दे वार कर लै, जे वाहगुरु ने चाहिया मैं बच गया ते मैं केवल तेरे ते एक ही करना। हुण देखो ते बचित्र नाटक की बाणी है दसम ग्रंथ की, साहब गुरु गोबिंद सिंह फिर लिखते ने एक एक तीर कित्थे लगा। महाराज कहिंदे ने हरी चंद कोपे कमाण सवारंग, ते बाणी थोड़ी जी महंगी है, अर्थां वल ध्यान दे आज। हरी चंद कोपे कोपे दर ते हरी चंद गुस्से विच आ गया, कमाण सवारंग उन्हें अपनी कमान नू तीरां नू संभालिया, पहला तीर छड्या, कह लगे प्रथम बाजियंग तान बाण प्रहारंग, प्रथम दर ते सब तो पहला तीर बाजिंग बाज दर दा घोड़ा, कहिंदे ने मेरे सीने नू सामने रख के तीर चलाया, पर गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे ने पहला तीर मेरे घोड़े दे सिर विच आ के वज्जा। कह लगे हरी चंद कोपे कमान समारंग, प्रथम बाजिंग तान बाण प्रहारंग, कह लगे दुतिया ताक के तीर मोको चलायंग, दूजा तीर फिर मेरे सीने नू सामने करके रखिया। कह लगे ने जदो इको दम दूजा तीर चलाया, कह लगे दुतिया ताक के तीर मोको चलायंग, ते गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे ने रखियो दईव मैं, दईव दर से वाहगुरु मेनू रखण वाला वाहगुरु नाल सी, कान स्वय कै सधायंग, ये तीर मेरे कन्ना दे नेड़े छू करके निकल गया, पर रखण वाले ने मेनू तत्ती वाह ना लगन दिती। कहिंदे ने तीजा तीर कढ़िया, बचित्र नाटक विच बचने कह लगे के हरी चंद कोपे कमानंग समहारंग, प्रथम बाजियंग तानंग बाणंग प्रहारंग, दुतिया ताक के तीर मोको चलायंग, रखियो दईव मैं कान स्वय कै सधायंग, कह लगे प्रीतिया बाण मारियो तो पेटी मझारंग। तीजा तीर हरी चंद ने कढ़िया।

गुरु अर्जुन विघ्न नके नाशक विघ्न नके नाशक श्री हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक श्री हर

माणक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो कर अनुराग एकंकारा सतगुरु तेह

0: गोबिंद सिंह साहब ने
1: पंच सिंह ताबिया
0: खड़े किया उस वक्त
1: नाम सुनो शुभ दे
0: नाम सुनो सुंदर निवास वाले आते
1: मनी सिंह ताबिया सजे
0: ताबिया महाराज सिलाना।

पर उन्हें राय सिंह का पता नहीं सी दसिया। यो महताब सिंह है, इहदा पुत्तर है राय सिंह। मैं एक बार फिर जिक्र कर दिया, राय सिंह का पुत्र है रतन सिंह भंगू, जिन्हें इतिहास लिखे प्राचीन पंथ प्रकाश। और इतनी भी अर्ज कर दिया, जड़िया घटनावां ने 11 अगस्त 1740 की घटना है, आ जिहड़ी दस तुहाडे नाल सांझी करन लगे। 1740 का मतलब है गुरु गोबिंद सिंह जी दे ज्योति जोत समाउण तों बाद, शहादत तों 32 साल बाद, सिर्फ 32 साल बाद। क्यों? क्योंकि 1708 विच गुरु कलगीधर पिता जी धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ज्योति जोत समाए सन नदेड़ साहब दे विखे। अक्सर ये दोने सूरमिया ने प्रण किया, उथो चले ने बीकानेर तो चले ने, बीकानेर तो चले ते इन्होंने आंदा स्कीम बनाई भी इवें मसे रंगड़ तक किवें पहुंचा जा सकता, उथे आके सारे हालात वेखे। एक क्योंकि दोवें अमृतसर दे सन, इसने नू गलियां दा पता सी सारियां, इन्हां हालात वेखे, हालात वेखे इन्होंने ठीकरियां नगरों बाहर जाके, उदो मिट्टी के भांडे लोग आम वरतते सन, ते मिट्टी के भांडे बाहर सुट दिया करते सन, जल टुट जाए ठीकरियां पईयां हुंदियां सन नगरां विच। इन्हां ने ठीकरियां इकट्ठियां कीतियां, दो बोरियां भरियां, बोरियां भर के अपने दाड़ियां नूं जिवें किवें मर्जी सवारिया, ते इवें बनाया जिवें मुगल होण, मुगलां वर्गियां पग्गां सवार के बनियां, उस तरह के सारा कुछ भेस बना के ते आ गए। ते आ गए जिथे, मैं एक बारी फिर बेनती करा क्योंकि सारियां गल्लां विचों दसियां नहीं जा सकनियां, श्री अकाल तख्त साहिब दे पिछवाड़े वाले पासे तों अगे रस्ता इधरों हुंदा सी, जदों गुरु तेग बहादुर साहिब जी आए सन उन्हां दा बनिया हुआ थड़ा अज भी उस पासे है। मैं गल नेड़े रखा, समा मेरा बहुत सीमा च है। ए गुरु के सूरमे उत्थे आए ते इन्होंने बोरियां में कंधे ते रखी हुई ने, जिथे अज अंदरली इलाची बेरी है, जिथे दरबार साहब की अंदरली ड्यूटी है, अकाल तख्त साहब के सामने की ड्यूटी है, उत्थे इन्होंने दोनों ने घोड़े बन्ने। उदो परिक्रमा कच्चिया सन, उत्थे तक घोड़े जाते सन, ते उत्थे घोड़े बन के दोनों सूरमिया ने अपने गुरु नू चेता किया, चेता करके अंदर चले गए, ते नाल एक बचन आख्या, सतगुरु जिसका कार्ज तिन ही किया, ओ हरिमंदर साहब नू बनाउण वेले सहाई होण वालिया, ओ गुरु ग्रंथ साहब दा रूप स्वरूप प्रकाश वेले सहाई होण वालिया, ओ गुरु की सिक्की दी शान रखण वालिया, अज कृपा कर ए सुखा सिंह महताब सिंह खाली ना जान, इस धर्म नू सोध के जान, बहाना तू बनाउणा पर्दा तू बनाउणा, अज एक कृपा कर। दोवें जने अंदर गए तो पुछते ने भी तुसी कौन हो, कहने लगे मामला तारन आए हैं, किन्ना समा हो गया इत्थे कोई बंदा चंगा आया नहीं, प्रबंधक ते असी मामला नहीं दे सके, साडे वल बाबा मामला रहिंदा है, ते असी मामला देन आए हैं, चौधरी है। उन्हें आख्या मत्से रंगण ने भी कोई गल नहीं, आउण दिओ अंदर आ गए। ते जदों उन्हें सामने रखिया, बोरियां सामने रख दित्तियां, कुछ एक विद्वान कहिंदे ने भी जदों बोरियां थले रखियां ते झुक के देखण लग्या, पर मेरा मन मनदा है, यह लिखित नहीं है, पर मेरा मन मानता है कि मैं धोखा नाल सिखा धोखे नाल सिखा ने वार नहीं किया होगा। जदों मस्या रंगण सामने होया तो उन्होंने उस वेले आखिया, ओ चेता कर ए गुरु गोबिंद सिंह दे स्थान नू, ए गुरु अर्जन पातशाह दे स्थान नू, गुरु रामदास दे स्थान नू, गुरु हरगोबिंद साहिब दे स्थान नू मेला करन वाले पापिया, तेरी मौत दा कारण बन के सिंह आ गए ने। उस वेले उन्होंने एक कोशिश की, महताब सिंह ने तेग चलाई, मसे रंगड़ दा सिर वढ के मारिया, ते उसे वेले सुखा सिंह ने अपने नेजे उत्ते सीस उहदा सिर टंग के दुबारे भज के आके घोड़ियां ते चढ़ के जिहड़ा पहला पड़ा कीता है। धन गुरु के सिख हुण तुसीं जाके देखो कदे अमृतसर साहिब तो गंगा नगर तक, ते बस विच जांदिया भी थक जांगे असीं, अपनी गड्डी च जांदे थक जांगे। ओ गुरु के सिखा ने जो घोड़िया नु अड्डियां लाईया, गुरु अगे बेनती की, सतगुरु अज असी रस्ते विच नहीं रुक सकते, ना असी थकीए ना साडे घोड़े थकण, सिरे पचा दी। गुरु के सिखा ने ले जाके सिर खालसे दी कचहरी विच हाजिर कर दिता। समय की सीमा समाप्त है, मैं 2 मिनट इसलिए ले गया, कल मेरे बच्चियां ने मैनू हुक्म कर दिता सी कोई एहो जी गल होवे ते आपां सांझी कर लईए। 2 मिनटां लई उहनां कोलों खिमा मंगना, प्यार नाल आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की।

नांगे खड़े और भूखे प्यासे दारू सिक्का नहीं किस पासे। फिर पूछता भी जे नहीं भी हालात माड़े ने फिर ज्योदे किमें सन। आ हूं सिख भुला बैठा बस आ जी दात है ना ए तो विछड़े हुए असी। उन्हें जवाब दिता रतन सिंह ने पंगू ने कहने लगे ज्यूदे का आसरे सन कहने ज्यूदे इस आसरे सन गुर बचन की उनको आस यही खजानो सिंगन पास। कहने लगे उन्होंने गुरु के बचना ते अटल भरोसा हों बस इको खजाना गुरु के सिखा को अज सिख ना बाणी ते भरोसा नहीं है जिन्ना हथ देखने वाले ते भरोसा है। ताही करके असि खुआर हो रहे हैं। जाबे गह विपरन की रीत मैं ना करो इनकी प्रतीत असि वो लकीर टप गए। आओ प्यार वालियो इत्थे सिखी का एक दौर खत्म होया इस इतिहास का एक दौर खत्म होया। उस तो बाद अगला दौर है जिहड़ा मिसला किवें तरक्की करके राज तख्त ते महाराजा रणजीत सिंह नूं बिठाउंदियां ने इह आपां कल तो जिहड़े दो चार दिन बाकी ने उन्हां विच मैं कोशिश करांगा पूरा कर सकां। हुण इह भुल्लां दी खिमा अदब सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की साहिब जीओ। जो हमारी विदोहती मेरी सतगुरा साबिद तुम हर जानी आपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता।

उस वेले दे जेपी संगत सिंह इतिहादक उस वेले दे विद्वाना ने कुछ किताबां लिखियां प्राचीन भीड़ा बारे उन्हें स्पष्ट किया भी गुरु ग्रंथ साहिब असल स्वरूप इन्हां कोल नहीं है। ते उस वेले एक काम यह भी किया गया इन्हां नूं गुरु ग्रंथ साहिब दे नालों तोड़न वास्ते इहदे विच एक पुजारी श्रेणी खड़ी कर दिती गई। उन्होंने मिथके आए सन भी इन्हां दी मर्यादा नूं बिगाड़ना है जिहड़ियां अजोके समय दीआं त्रुटियां जसी वेख रहे हैं ये पुजारी श्रेणी दीआं पाईआं होईआं ने। गुरे नूं पता सी इस गल दा भी इन्हां नूं बर्बाद करना है। और तीजी गल जिहड़े इतिहास की गल है वह तो सानूं अज तक भी उमें दी उमें चली आ रही है। असीं मनण नूं लड़न नूं तैयार हैं लेकिन मनण नूं गल समझण नूं तैयार नहीं। एक मैं छोटी जी बेनती होर करन लगा और मेरी इस गल नूं खिमा कर दिओ जे क्योंकि मैं लुकाउंदा नहीं भावें मैनूं इहदी सजा भी कई बार भुगतनी पैंदी है पर मैं लुकाउंदा नहीं कदे भी तुहाडे नाल धोखा नहीं कदे करदा मैं सच कहण दी कोशिश करना। आ गल बेहद प्रचार दित्ती गई भाई श्री अकाल तख्त साहिब दा हुक्मनामा जिहड़ा होवे ते हर सिख दा फर्ज बनदा उहदे अगे शीश झुकावे। खिमा करे जो मैं गल बेनती करा तुहाडे नाल भी सच है सुनना पैना तुहानू लेकिन गुरु साहिबा ने अपने वेले ऐसा नहीं सी कीता। गुरु साहिबा अपने वेले ऐसा नहीं सी कीता। गुरु साहिब ने दादू की समाधि नूं नमस्कार करके तीर नाल इक्को ही गल तां सिखाई सी भी कदे गुरु भी ऐसा करे सिखा तू तद भी बांह पकड़ खलो के बांह पकड़ सकदा उवें भी सतगुरु तू यह क्यों कर रहे हैं सानू तू की उपदेश देना ते आप तू की करना। और बकायदा गुरु ने फिर यह नहीं किया भी अज मैं तुहाडा गुरु हां ते तुसी मेरे सिख हो ते इत्थे लेन देन कर लीए। उन्हें आखिया भी नहीं सतगुरु तेनू इस गल की तनखा लगेगी इस गल की तेन भुगतना ही पवेगी। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने बचन आखे कहन लगे सत बचन मैं इस गल नूं मन्नांगा ते सतगुरु जी ने उस वेले अपने सिखां कोलों लवाई हुई तनखा नूं पूरा किया सी। अज साडी कौम नूं इसलिए वरत्या जा रहा है मैं बेनती करा ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है। जदों गुरु ने कड़ा दिता सी उदों कड़ा भी इसे लिए दिता सी क्योंकि गुरु पातशाह ने कला वरताई सी उस वेले एक भाणा वरताया सी ते कुछ एक पंडितां नूं बुला के भी सिखां दी मैं पकियाई देखा। साहिब कहण लगे भी भलिया पुरखा आ मेरा हथ वेख ते मैनूं लगदा मेरे ते कोई कष्ट है। हुण ओह लोग बेचारे इत्थों तक ही सीमित ने उहदे कोल तां कोई चला जावे उहनूं इह थोड़ा पता भी इह गुरु है। उन्हें सोचा भी कमाल है इन्ने चिरां दी गल नहीं सी इन्हां साडी मन्नी ते हुण हत्थ दिखाउण लगे ने। सतगुरु नूं कहण लगे भी तुहाडे ते आउण वाले समें च कष्ट आउण वाला है। साहिब कहण लगे निवृत्ति किवें हो सकदी है। कहण लगे कुछ इक रस्ता बस्ता सानूं दिओ तुसीं निवृत्ति कर देंगे असीं कोई वड्डी गल नहीं। उन्हें आखिया की देना पवेगा। कहण लगे कुछ इक दाल कुछ इक तेल ते कुछ इक उस वेले दे जो नमक वगैरा जां मिठा वगैरा जो उन्हां ने उस वेले दस्सिया ते उन्हां आखिया भी ठीक है। सतगुरु जी ने उन्हां नूं खोतियां ते भर के लदा के भेज दिता सिखां रस्ते चों जाके लुट लिया। कहण लगे सजना तू भावें गुरु दे घर रोज लंगर चलदा तू रोज परिवार समेत आ रज के खा थानू कोई मुश्किल नहीं है। जे तेरे घर विच भी कोई मुश्किल है तां रस्ता बस्ता सी तैनूं लद के दिंदे लै के जा कोई मुश्किल नहीं गुरु घर दा दित्ता होया कदे घाटा नहीं आउंदा। पर जिवें तूं अज लै के चलिया ना यकीन जानी असीं अज वांगू तैनूं लै के नहीं जे जाण देना इह ते कलंक लग जाएगा इतिहास नूं। उन्हां आखिया फिर किवें जाण दिओगे। उन्हां सारा कुछ लुट के वापस लै के आए। मैं बेनती करा सिखां नूं परखण वास्ते सी ना कि गुरु गोबिंद सिंह नूं किसे पंडित विच विश्वास सी कदा चित नहीं ऐसा ना सोचियो पर सिख नूं परखण वास्ते सी। और सिखां मोड़ के लिआंदा ते ओ दाल दे बनाए बड़े उस वेले ते बड़े बना के छकाए सिखां नूं ते तेल विच तलके ते सतगुरां ने उस वेले सिखां ने याद रखण जोग बात मैं बार बार बेनती करा एक एक इतिहास का नुकता तुहाडे नाल सांझा करना चाहुंदा। उस वेले आनंदपुर साहिब दे विच लोहगढ़ एक फैक्टरी सी बकायदा और उस लोहगढ़ की बनी हुई वह नागड़ी है जिदे नाल भाई बचित्र सिंह ने मस्त हाथी नूं मोड़िया सी। उस लोहगढ़ की फैक्टरी विच सिखां ने कड़े बना के ते अपने हथां विच पाए। सतगुरु जी ने पुछिया भी भलियो आए तुसी गहने किवें पाए ने ते उस वेले गुरु के सिखां ने आख्या सी भी सतगुरु जदों गुरु ते भी कोई भारी बन जाए ना तो फिर सिख टालना जानदे ने भी ओह भारी किवें टालनी है ते जदों सिख गुरु ते भी औखी घड़ी बन जाए ते सिखां नूं पता इस गल दा किवें करना। मैं सिर्फ

0: बस है पठान, बस है बास पठान को दीनों बिपर बताई।
1: तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी भी सजी होई। गुरु रूप गुरु खालसा साध संग जी आओ, प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज, चल रही लड़ीवार कथा विच श्रवण कर रहे हां प्रसंग श्री चमकौर साहब। अचानक तुरकां ने हमला किया, सहिदा बेग शरनी पिया, श्री आनंदपुर साहब पहुंचे ने। दो तीन महीने का समा बड़ा सोहना लंघिया, अचानक एक ब्राह्मण ने पुकार की थी कि मेरी स्त्री नूं खो के लै गया पठान बसी पठाना वाला। इस प्रकार देवदास नाम है ब्राह्मण का, जाबर खां पठान है। महाराज जी ने बाबा अजीत सिंह जी नू 100 के करीब घोड़ सवार दे के भेजिया। शाम 2 घड़िया दिन बाकी सी जदों चले ने, सारा पेंडा तय करके उत्थे पहुंचे। रात नूं जाके घेरा पा लिया। गुरां दा वचन सी कि सिर्फ कल्ले पठान नूं ही लियाउणा, होर किसी नूं तंग नहीं करना। महाराज दा वचन मन के पठान नूं बन्न लिआंदा रस्सियां नाल, अते उस ब्राह्मण दी स्त्री नूं भी नाल लै के आए है। आ के महाराज नूं फतेह बुला के सजे हन दीवान दे विच। आओ अगे श्रवण करदे हां सतगुरु महाराज ने की सजा दित्ती, की उपदेश दिंदे ने खालसे नूं। प्यार सत्कार नाल गज के आखो, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु
0: साहिब जी। जो पई तुरक सुबत जै सहज सुभाए, जाए अचानक घेरो पाए।
1: सहज सुभाव की बिना किसी डर तो, बिना किसी खौफ तो, ये साडा राज है। मैनू केड़ा कोई कुछ कह सकता, मैं जो मर्जी करा। इस तरह आराम दे नाल जबर खां सुता पिया है, अचानक ही जाके सिंघां ने उहदे घर नूं घेरा पा लिया।
0: किसो न आगे शस्त्र उठायो, गयो पठान सबंध चलायो।
1: क्योंकि हो सकता है रवि जी कहंदे ने किसी ने अग्गों शस्त्र नहीं उठाया, हो सकता वो इलाके दे विच बदनाम होवे। जबर खां पहलां भी लोकां दीआं धीआं भैणां नूं चुक लिआउंदा होवे, ताइयों किसी ने उहदी मदद भी नहीं कीती है, कोई विरुद्ध भी नहीं बोलिया है। सिंघां ने जाके बड़े आराम दे नाल उसनूं पकड़ लिया।
0: जिनी को इक तुरंग चढ़ायो, ए कुरीत फल सबन सुनायो।
1: ब्राह्मणी नूं बाहर लिआंदा, पठान नूं भी खड़ा कर लिया, पिंड वालिआं नूं इकट्ठा करके। सिंघां ने उहदा कसूर सुनाया, बई असीं इहनूं एवें नहीं लै के जा रहे, इहने आह कुकर्म कीता है, इस करके असीं इहनूं पकड़ के लै के

0: एक पूरे जट ने भेजा सी दल बिदार जिहड़ा घोड़ा सी महाराज का पहला ए दूजे का नाम सी दल शिंगार ए दल बिदार एक है बेगी एक नीला सतगुरु के घोड़े बदलते रहे जदों चंगा घोड़ा आया सोहना इस प्रकार के नाल महाराज ने वह घोड़ा हुक्म किया कि लैके आओ
1: मिष्ट कृत को रातव करो अब लो पली पांत प्रित परो
0: हुण उहनूं चंगीआं निहारियां खवाईआं चंगा घिओ आदक जां देना जां मिठा पा के देना ऐसियां निहारियां खवा के सोहनी पालना कीती होई सी
1: आज पाए कर दीन शिंगारो भूखन करन हमेला डारो
0: महाराज कहने अज पाई उहदे ते सोहनी काठी पाओ ते उहदे गले दे विच जिहड़ियां हमेलां हुंदियां ने गहना हुंदा गल दा सजा के चंगी तरह घोड़ा लियाओ
1: कंचन के को जेवर पहरावो पले त्यार करके ले आवो
0: सोने दे सोने गहने पाओ भले तरीके नाल साडा जिहड़ा घोड़ा है ये तैयार करके ले आओ
1: हुक्म मान सेवक किए त्यारा अलंकार कंचन शिंगारा
0: हुक्म मान के सेवक ने सोहने गहने पाए जिथे जिथे तक सजा सकते सी गुरां दा सुंदर घोड़ा सजाया
1: कलगी धरी सीस पर खरे लूल हमेल सजावन करे
0: कलगी सोहनी जिहड़ी सी उह सजाउणा कीती घोड़े दे वी कलगी लग जांदी सुंदर अते लूल हुंदे ने मोतियां दे छब्बे इस प्रकार दे नाल अरबी दा अखर होण करके मोतियां दे जिहड़े सोहणे छब्बे सी उह लाउणा कीते जां मोती लटकाउणा कीते हन
1: कबका दे कर लियायो तहां प्रभु बिराजे बैठे जा
0: सोहनी लगाम पा के घोड़े नूं उत्थे लै आया जिथे सतगुरु

0: महाराज ने देखा कि घोड़ा बड़ा सोहना है, बड़ा सुंदर है, सुडौल है, चंचल है, फुर्तीला है। इस तरह घोड़े नूं देख के, शस्त्र नूं देख के, एक तैयार पर तैयार सिंह नूं देख के इस तरह सतगुरु जी बड़े खुश होंदे हन।
1: उठ करना निद तब चल आए, एक रकाब पग पंकज पाए।
0: कृपा दे के जाने सतगुरु जी उठ के उस वक्त आए ने, घोड़े दे एक रकाब दे विच अपना जो चरण है खब्बा चरण पा के घोड़े दे उपर चढ़न दी तैयारी विच हन।
1: ग्रीव केस गै है के जवै, उकसे उपर चढ़बे तवै।
0: ये जेड़े घोड़े दी गर्दन दे उपरले पासे वाल हुंदे ने, इन्हां नूं पकड़ के चढ़िया जांदा है। महाराज ने जदों उहदी गर्दन दे वाल पकड़े अते रकाब विच चरण पाया, जदों घोड़े दे

0: महाराज वापस उतरिया एकदम धरती ते खड़े हो गए पर सज्जी बांह नूं एक झटका वज्जिया थोड़ा जिहा एकदम घोड़े ने छाल जो मारी सतगुरु फुरतीले आप भी बहुत ने एकदम दे नाल अणजाण बंदा हुंदा तां घोड़ा उहनूं सुट दिंदा पर सतगुरु सच्चे पातशाह तां आप मालक ने सृष्टि दे अंतरजामी सतगुरु जाणदे ने की होण वाला है इस करके सावधान रहे
1: जडे बोर पीड़ा कुछ पए सीतुरमाल संग बंद गए
0: जदों दोबारा फिर घोड़े ते चढ़े बांह विच कुछ पीड़ होई झटका वज्या बांह नूं फिर सेवक ने चिट्टे

0: महाराज जी ने उस वक्त तो पहला घोड़े नूं हौली हौली तोरिया, तोर के चंगी तरह फिर एकदम तेज घोड़े नूं भजाउणा, सूरज वल नूं मूंह करना, भजा भजा के हफा देना, इस तरह फिर घोड़ा ठीक हो जांदा है।
1: बहुत आए कर भले फंदायो, पुनजनी मंदर प्रभ आयो।
0: घोड़े नूं भजा के फंदाया, चंगी तरह छाला भी मरवाइया, वो घोड़े नूं भी पता लग जांदा कि बंदा तकड़ा जिहड़ा मेरे उत्ते कोई भी बैठा है कैसा है, किन्ना क जानकार है। वो भी समझ गया, क्यों गुरां दे जदों सुते सिद्धी सतगुरु जदों चरण पा के उत्ते बैठ गए तां घोड़े नूं भी पता लग गया कि मैनूं किड्डी महान सेवा मिली है। पहला मैं अपनी बड़ी मूर्खता कीती, अंदर पछताउंदा है। सतगुरु महाराज घोड़े नूं इस तरह घुमाउंदे होए आ के उतरे महिलां दे सामने माता